नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन कौ सब गुण सुख दियो सतरन कौ पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला

0: सतगुरु कृपा करन, इतनी महान, इतनी महंगी, इतने प्राइसलेस बचन गुरु के, जो जिंदगी नूं जिन मानस ते देव ते गए, जो आम मनुख नूं उस परमेश्वर देव रूप परमात्मा रूप बना देन, ऐसी समर्था रख दे ए बचन, इन्हां दी समझ आ जाए। समझ ही नहीं आती कई बार, समझ विच आ जाण ते ए ऐसी करामत करदे ने कि जिथों ये बाणी आई है उत्थे लै जाती। गुरु रहमत करे सानू इन्हां बचना दा दी समझ आए, तां असी चल सकीए, तां इह हो सकन लोक सुखीए, पर लोक सहेले नानकार प्रभु आपे मिले। अगला प्रोग्राम प्यार नाल सरवण करो। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के साजी नवाजी साध संगत जी, पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करा रहे सन। पंथ दे विद्वान कीर्तनीय सत्कारयोग भाई निरंजन सिंह जी जवद्दी कलां वाले ते उन्हां दा रागी जथा भाई साहब जी दा समुचे जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, भाई साहब आने वाले दिनों दे विच वी इसे तरह रोजाना ही शाम दे दीवाना विच 7:15 तो आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा गुरु चरणां दे नाल जोड़नगे। आप संगतां नूं बेनती है कि वध तो वध हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने जी। आओ समा है इतिहास दियां विचारां दा, ढाडीवारां दी सांझ कर रहे हन पंथ दा प्रसिद्ध ढाडी जथा ज्ञानी रशपाल सिंह जी पमाल ते उहनां दे साथी। आओ ढाडी जथे पासों एक कविता सरवण करके लाहे प्राप्त करिए, उपरंत परिवारां दी चढ़दी कला दी अरदास बेनती होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल जुड़ बैठी गुरु की प्यारी गुरसिख संगत, इलाही बाणी तुरकी बाणी दा रस पिना कीर्तन गुरु के महान कीर्तनी भाई साहब भाई निरंजन सिंह जी जवद्दी कलां वालियां ने गुरु प्यारियां गुरसिख संगतां नूं निहाल कीता है। आओ अदब ते सत्कार दे नाल सतगुरु महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए गुरफतेह दी सांझ पाईए। आखो गज वध के जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास दे विच असीं बड़े प्यारे ये बोल सांझे करदे हां, ऐ मेरे मालक ऐ सचे पातशाह जीओ, कृपा करियो सानू सही प्यारे उन्हां दा मिलाप, उन्हां दा संग, उन्हां दी संगत दिओ जिहड़े तेरे नाल जुड़े हुए ने। जुड़ना ही जिंदगी, कीर्तन साडा जोड़दा है। बाबा फरीद जी दे पास उन्हां दा शरदालू, उन्हां दा सेवक प्यारा सोने की कैंची लैके आया। जदों सोने की कैंची अगे रख के उन्हें सीर झुकाया, मत्था टेकया, बाबा जी कहिंदे नूं चुक लै, साडा तां काम ही नहीं इह, साडे पास जे लैके आउणा सूई ते धागे नूं लैके आ। कैंची कटदी असी कटदे नहीं, असी तोड़दे नहीं, असी तां जोड़दे हाँ। सूई अते कैंची, कैंची दी जिंदगी ते धब्बा दाग हो सकदा, पर सूई दी जिंदगी ते कोई धब्बा दाग नहीं। जिहड़े परोपकारी आ उह हमेशा गुरु दे नाल जोड़दे ने। जुड़ना आओ गुरु महाराज अगे अरदास बेनती करिए, दाता सानू उस प्यारे दा संग दई जिहड़ा तेरे नाम दे विच ओत-पोत होया होवे अते जिहदे ते तेरे नाम दी रंगण चढ़ी होवे, अते साडे ते भी कृपा हो जावे, असीं भी उस वाहिगुरु दे नाल अकाल पुरख दे नाल जुड़ जाइए। कोई मिल जे रब दा प्यारा, प्यारे नाल जोड़ दे ढाडी जथा पमाल दा गा के इंज पेश कर।

0: नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो
1: साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सा भगवाइया
0: शांत सुख मन आए वसे आज इच्छा साब पजाइया
1: सदा कुर्बान किता गुर बेटो जस दिया ए वडिया
0: नानक सुनो संतो शब्द

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाए, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लईं त्याहे, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाए, अर्जन हर गोविंदनो सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याहिऐ जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधावै ताए, सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के, खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू।

अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है

छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काली।

कि सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है।

अदेशल अलेख है, अमेशल अपेख है, जमीन अल जमा है, अमे कुल इमा है, करी मुल्क माल है, के जरूरत जमाल है।

जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के कर्ण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्या है, सर्वनाश्या है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, पर ते पर है, करुणा कर है,

0: अंतर्यामी
1: अपने गतमित जानो आपे
0: आपन संग आप रहते
1: तुमरी उस्त तुम ते होए
0: नान कवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: सा संग दुर्मत मल हया
1: सगल उद्दम में उद्दम पला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: सगल बानी में अमृत बानी
0: हर को जसन रसन बखानी।

0: मरे
1: इसके अंतर बसे निरंकार
0: इसकी सीख करे संसार
1: तुम पाने तिन प्रभ जाता
0: नानक कुंजन चरण प्राता
1: बेंती बार बार सब जाने
0: अपना किया आपे माने
1: पाप करतन वीरा
0: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
1: सगल ते रहत
0: सब जाने आत्म की रहत

0: तिष्ठा कर को रख मन माहे तिसको सिमरत परम गत पावे सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
0: तिसे त्याग कर तवर लंबावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय
0: मन आठ पैर ताका जस गावी जय
1: प्रसाद तू सबको माने
0: मुख ताको जस

0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: सातर सगल छिद्र ठाके
0: मन सानी पर ठाकर प्रभु ताके
1: प्रसाद तुझको न पहुँचे
0: मन सास सास सिमरो प्रभु चे
1: प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भक्त करे
1: जय प्रसाद भूखन पहरी जय
0: मन सिमरत क्यों आलस की जय
1: प्रसाद अस हस्त सवारी
0: मन तिस प्रभु को करु नाम सारी
1: प्रसाद बाग मिलख तना
0: राख प्रोए प्रभु अपने मना
1: तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सदा से त्याई
1: जो एक

0: साध के संग मुख उज्जवल होत
1: साध संग बल सगली खोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक पर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुल्ले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग हुए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कतहूं तावे
1: साध संग अर्थत मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सा

0: साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बनहाई,
0: साध के संग न कभू तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस्ता गोचर लहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निधान,
1: नानक साधु के करबान,
0: साध के संग सब कुल उधारे,
1: साध संग साजन मीत कठम निस्तारे,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: जे तन ते सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सो पासुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सब लज नाम,
0: साध के संग नहीं कछ काल,
1: दर्शन पेट तो होत निहाल,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहां उहां सुहेला,
1: साध संग विशरत हर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न मिथ्या जावे,
0: पार ब्रह्म साध रित बसे,
1: नानक उतरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाम,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभु मीठा,
1: साधु के संग कट कट डीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने,
1: जेता सुने तेता विख्याने,
0: साध की उपमा त्यो गुणते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा व्यंत,
0: साध की

आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वासी ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी सुफल भला नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सकल संसार ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार ब्रह्मज्ञानी ओम बद त्यागत ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश

ब्रह्म ज्ञानी सर जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी

0: सेनापति
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट चार विहारी
1: कई कोट पै तीर्थ बासी
0: कई कोट बन पर मैं दासी
1: कई कोट वेद के स्रोते
0: कई

0: जन्म है जीव है मर है
1: कई कोट जोनी फिर है
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले थक पाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में जंत
0: जह जय पाणा तह तह राखे
1: नानक सब

0: करे कुवारी।
1: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान,
0: सब नानक लगे परवान।
1: मूठ कर्म करे हो तारे,
0: शर्म पावे सगले बिथारे।
1: नरक तपस्या करे हंकार,
0: नरक स्वर्ग फिर फेरे अवतार।
1: नरक जतन कर आत्म नहीं दरवे,
0: दरगे को कैसे गवे।
1: आपस क्यों भला कहावे,
0: जिसे भलाई निकट न आवे।
1: रेन जाका मन हुए,
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए।
1: जब लग जाने मुझते कुछ होए,
0: तब इसको सुख ना ही कोए।
1: जब जाने मैं किछ करता,
0: तब लग गर्भ जून में फिरता।
1: जब तारे कहू बैरी मीत,
0: तब लग ने चल ना ही चीत।
1: जब लग मुँह मगन संग माए,
0: तब लग तार मराए देश जाए।
1: जब कर पाते बंधन टूटे,
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे।
1: सहज खट्टे सहज खट्टे लख क्यों उठता वे,
0: तृप्त ना आवे माया पाछे पावे।
1: नानक भोग भिख्या के करे,
0: नतावे कब कब मरे।
1: बिना संतोख नहीं को राजे,
0: स्वप्न मनोरथ वृथे सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख हुए,
0: बड़ भागी किसे प्राप्त हुए।
1: नानक रावण आपे आप,
0: सदा सदा नानक हर जाप।
1: नानक रावण करने हार,
0: इसके हाथ कहा विचार।
1: दृष्ट करे तैसा हुए,
0: आपे आप प्रभ सोए।
1: किन्नो आप सो अपने रंग,
0: सबते दूर सबू के संग।
1: ये देखे करे विवेक,
0: आपे एक आपे अनेक।
1: करे न वैसे आवे न जाए,
0: नानक सद ही रहा समाये।
1: आप प्रदेश समझे आप,
0: आपे रचिया सब के साथ।
1: आप किन्नो अपन विस्तार,
0: सब कुछ सब करने हार।
1: पेन कहो किश होए,
0: नंदर कैसे होए।
1: अपने चल ताप करने हार,
0: कौतक करे रंग पार।
1: मन में आप मन अपने माहे,
0: नानक कीमत कह न जाए।
1: सत सत सत प्रभ स्वामी,
0: गुर प्रसाद किने बखियानी।
1: सच सच सच सब कीना,
0: कोट मदे किने बिरले जीना।
1: भला भला भला तेरा रूप,
0: अति सुंदर अपार रूप।
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी,
0: कट कट सुनी सर्व दुखिया।

0: सुख होए,
1: जिसका नाम कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक विघ्न न लागे कोए,
0: उस तत्म

0: साक्षात्कार दीपक प्रगास
1: गुरदर्शन देख मन होए विगास
0: ध्यान में मार्ग पावे
1: त्यो साधु संग में ज्योत प्रगटावे
0: संतन की बात छो तूर
1: नानक की आलोचा पूर
0: मूर्ख काहे बिल्लाइए
1: पर्व लिखे का लिखिया पाइए
0: सुप्रभ देवन हार
1: अवर त्याग दूत से चतार
0: करे सोई सुख मान
1: उल्ला काहे फिरे अजान
0: बस्ताई तेरे संग
1: करे हो रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पासे ती कर जाए
0: जिस वकर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: जब मान लिहो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: खेप संत संग चाल
1: अवर त्याग विख्या जंजाल
0: तन तन कहे सब कोए
1: वो कुजल हर दरगह सोए
0: व्यापार विरला व्यापार है
1: नानक ताके सद बलिहारे
0: चरण साध के तोए तोए पियो
1: हर प्रसाद को अपना जियो
0: साध की तूर करो स्नान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा बड़ पागी पाइये
1: साध संग हर कीर्तन गाइये
0: बिगंते साधु रखे
1: हर गुण गाये अमृत रस चाखे
0: उठ गये संते दराया
1: सर्व सुख नानक ते पाया
0: मृत को जीवालन हार
1: भूखे को देवता दार
0: सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे
1: पुनर लिखे का लहना पाहे
0: तिसकाउ करने जोग
1: दूसर हुआ न होगा
0: जन सदा सदा दिन रहनी
1: साथे ऊंच निर्मले करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सोजन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की प्रतीत
1: तिस जन आवे हर प्रवचीत
0: भक्त सुनिए ते लोए
1: जाके हृदय को होए
0: सच करनी सचता की रहत
1: सच हृदय सत

जो कर पाया सोई होग। इसका मंत्र न जाने होर, सर्व थोक सुनिए करता के, तब मैं तपीसर कृष्ण में भोगी।

0: सो सब साधु संग प्रीत
1: सोभा करे पली करने
0: सोभा पद हकी सानी
1: पावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हरे अखद लाए।

0: मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: कमल रखो मन माहे
1: जन्म जन्म के किल विख जाहे
0: आप जपो बरा नाम जपावो
1: सुनत कहत रहत गत पावो
0: सार पूत सत हर को नाओ
1: सहज सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल
1: बिनस जाए हम मैं विख पैल
0: चिंत बसे सुख नाल
1: सास ग्रास हर नाम समाल
0: सियान पप सगली मना
1: सास संग पावे सच तना
0: पूंजी संच करो विहार
1: इहा सुख दर गह जयकार
0: निरंतर एको देख
1: कहो नानक जाके मस्तक लेख
0: को जपे को सलाहे
1: ए

0: सक होए
1: हरस पावे बिल्ला कोए
0: जाख्या से जन तृप्ताने
1: पूरन परख नहीं डोलाने
0: उबर परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाओ साध के संग
0: सरन आन सब त्या

0: जाने खेल बनाया
1: आज्ञाकारी की नी माया
0: के मद लिपतो रहे
1: जो किस कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे ता लए समाए
0: इस्ते हुए सुनाही बुरा
1: उरे कहो किने कछ करा
0: आप भला कर तू तत नीकी
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साच तारी सब साच
1: बोध बोध आपन संग राज
0: की गतमित कही न जाए
1: दूसर होए तसो जी पाए
0: इसका किया सब परवान
1: गुर प्रसाद नानके हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए
1: आप मिलाए लए प्रभु सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: धन धन धन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जन आवन का यह सुआओ
1: जन के संग आवे नाओ
0: आप मुक्त

0: प्रकाशोपदेश
1: पार ब्रह्म कर
0: सा सिमरो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: सनित त्याग होत्र।